Photography is a hobby, Darshan, not a career. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: संगीत भरी स्टेशन ये है रेडियो SBS. रेडियो SBS. रेडियो SBS.
1: Thank you.

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तय दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज बुधवार का दिन है, 2 सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 2 मिनट व्यतीत हो चुका है, 2 मिनट स्टूडियो तय हो चुका है। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0322 65 65 60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार बीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन के आवास में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

सुनने वालों के लिए बस पेश की गई हर ये हरन के आवास में की सुबह सुबह लो शिव का नाम सुंदर भजन हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज बुधवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

हे गौरे सुंदर भजन क्योरे सुंदर सा गणेश जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपको मालूम होंगे लेकिन फिर भी आपको हम याद दिलाते हैं, आने वाली शुक्रवार 4 सितंबर श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को अभी से बधाइयां ही बधाइयां पेश किया जा रहा है और आने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के खास उपलक्ष्य पर अनूप जलोटा जी की आवाज में एक सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर और अति सुंदर भजन प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में अनूप जलोता जी की आवाज में अभी आपने सुना। आने वाले शुक्रवार 4 तारीख सितंबर खासतौर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसी खास उपलक्ष पर ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चले एक और सुंदर भजन आने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खास उपलक्ष पर आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-2266611। चलिए प्रोग्राम में ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं।

अति सुंदर भजन प्रोग्राम में पेश की गए। आज की भजन यात्रा प्रोग्राम में सुन बलो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट पर रोजाना आपका दाह होरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र होता है, जाकर आप देख सकते हैं। सुरेश वत्कर प्रोग्राम में

सुंदर भजन सुरेश वत्कर की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। घड़ी की ओर देखा जाए इस वक्त 11 मिनट बाकी है प्रोग्राम में सुबह 8 बजे में, तो चले यहां से ये प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों की सेवा में आरती भजन बस पेश किया जाएगी। आरती भजन जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। और आरती भजन पेश किया जाएगी अमिता बच्चन की आवाज में। सुंदर सा आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए, और खासतौर पर सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

चमक फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

रेडियो SBS का प्रोग्राम में अभी आपने सुना कुमार सानू जिघे आवास में ये खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों घड़ी की ओर देखा जाए 8:00 प्रोग्राम में 10 मिनट व्यतीत हो चुका है। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। तुलसी कुमार और अदनान सामी की आवाज में एक गाना पेश किया।

द फिल्म डार्लिंग उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म डर की ओर हम आपको ले चलते हैं। उदित नारायण और लता जी की आवाज में

uit de film Dar Lata Mangeshkar aur Udit Narayan ki awaaz mein ye gaana bus program mein pesh ki gaye aap sabhi sunne walon ki seva mein sunne walon aane wale ravivar Kumar Sanu aur Anuradha Potwal ka live concert pesh hone wale hain aur wo bhi Afas live Amsterdam shahar ke andar mein ticket कुछ बाकी रह गया है बैना एंड बैना आउट फॉर कोख्त तो जल्द कीजिए जब भी आप टिकट खरीदना चाहेंगे ice-tickets.com वेबसाइट पर आप जाकर अपना टिकट को खरीद सकते हैं और वहां पर आप देखेंगे कितनी कम टिकट रह गया है बैना एंड बैना आउट फॉर कोख्त ice-tickets.com वेबसाइट पर आप जाइए कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल का कॉन्सर्ट का टिकट के लिए

में भी इसके गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। सूरज जगन प्रोग्राम में जाना कबूल इतनी सी बात है।

जगन की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, इतनी सी बात है गाना का बोल बस प्रोग्राम में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई जावेद अली की आवाज में अभी आपने सुना ये खूबसूरत गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शान की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

सभी सुनवालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। सबसे पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। और यहां से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम धर्मवीर, उसी फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुनते हैं।

गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl और उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम सुनाई देता है और जिस तरह से भी आप सुनना चाहेंगे आप हमारा ये रेडियो SBS का प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ है इस तिहारे जरूरी खबरें रिक्लाम के लिए टेलीफोन नंबर है 03025656060 या तो ईमेल कीजिए radio.sbs का वेबसाइट की जरिए। आपको खबर किया जा रहा है radio.sbs का कंतूर का टेलीफोन नंबर जो है 24 घंटा लगातार आप सभी के लिए होता है। और आपको भी खबर किया जा रहा है जरूर आप तार कीजिए हर एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन्फो लेने के लिए। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में अबकी बार पेश किया जा रहा है। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली। गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी लता मंगेशकर की आवाज में, लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप

कर के आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आज की प्रोग्राम में जो अभी आपने सुना। हमारे सभी सुनने वालों को वेलकम कहा जा रहा है। जिन लोग प्रोग्राम को इस वक्त सुनते हैं और रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, किशोर कुमार अनाशा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार फिल्म जवानी दीवानी, उसी खास फिल्म का गाना की ओर। किशोर कुमार एन आशा जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज के प्रोग्राम में किशोर और आशा जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम यादों की बारात, सॉन्ग बाय किशोर एंड आशा।

खूबसूरत प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए किशोर दाशा जी की आवाज में ओ बेरी सोनी फिल्म यादों की बारात उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई है। तो उसी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं अपना अपना रिएक्शंस कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। टेलीफोन नंबर है स्टूडियो का 03-2-62-66-11

तुम्हारी कसम फिल्म का नाम आशा भोसले और मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले गाना आज की प्रोग्राम में किशोर एन आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम है जुदाई। उसी फिल्म का ये गाना अब की बार आप सुनते ही रहना। 1980 का फिल्म है, फिल्म जुदाई। गाना जो अगली बार आप सुनेंगे, मार गए मुझे तेरी जुदाई, सॉन्ग बाय किशोर कुमार एंड आशा भोसले। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

शाह की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए मार गए मुझे तेरी जुदाई। खूबसूरत प्यार भरी गाने रेडियो SBS के जरिए बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले सुमन कल्याणपुर एंड मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी

0: सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार मोहम्मद रफी की और हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।
1: जब से आंखें हो गई तुमसे चार।

रेडियो SBS के जरिए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर किशोर एन लता जी की आवाज में।

गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आपकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, एक गाना होगा एडो फिल्म अपने अपने, सुरेश वतकर और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

और लता मंगेशकर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो बीठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए गाना और प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है एक और खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

एक काफी प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में। किशोर कुमार एंड लता ने फरमाया आज की प्रोग्राम में ये काफी प्यार भरी गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11 और अब की बार गाना होगा कितनी अकेली, सॉन्ग बाय द लेट लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी तलाश। कितनी

दास में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था तलाश कितनी अकेली। चलिए प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: है कि अब हम गए काम से, धड़कने लगता है।
1: खासतौर पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारे बहुत से सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, सभी को वेलकम। और प्रोग्राम जहां जहां पर भी आप सभी सुनते हैं जरूर और जरूर सुनते ही रहना। तलत महमूद और लता मंगेशकर प्रोग्राम में।

रेडियो SBS के जरिए दलित महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में अब की बार ये गाना आप सुनते ही रहना। फिल्म का नाम है फैशन। फैशन फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है हेमंत कुमार एंड गीता दत्त की आवाज में।

हेमंत कुमार एंड गीता दत्त की आवाज में ये गाना पेश की गए फैशन फिल्म का नाम था। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है ओ सनम तेरे हो गए हैं हम, मोहम्मद रफी एंड लता।

रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। आशा भोसले एन महेंद्र कपूर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। आज की इस खास प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना, जबकि पुरानी नख में पुरानी फिल्मी गाने आप सभी के लिए बस पेश किया जा रहा है।

महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में। शहर उत्तरेख हॉलैंडी से ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। लता मंगेशकर की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और काफी पुरानी फिल्म का गीत होगा।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। चले आपकी बार सुनील दत्त का एक खास फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

श्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर और बप्पी लहरी के आवाज में गाना, आज की लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर और बप्पी लहरी के आवाज में गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

और गाना का बोल है दिल था अकेला अकेला। सभी हितनक में सभी खूबसूरत प्यार भरी गाने संगीत भरी रेडियो स्टेशन रेडियो SBS के जरिए हमेशा पेश किया जा रहा है।

एक्शन। चलिए प्रोग्राम में द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

0: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
1: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
2: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
0: 6th of September, अनफॉरगेटेबल 90s।
1: शो आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
0: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
3: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

0: प्रोग्राम में पेश की गए प्यार में कभी कभी, प्यार में कभी कभी फिल्म का नाम महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं। महालक्ष्मी आयर के बाद कुमार सानू प्रोग्राम में।
1: किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

सानू जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार हम आपको ले चलेंगे अभिजीत और अलका जी की ओर। गाना जो पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए

प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा भी है। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सबीर कुमार एंड अलका याग्निक प्रोग्राम में

0: रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना फिल्म का नाम कसम से है। रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस आज के ये प्रोग्राम में पेश
1: है।
0: चलिए प्रोग्राम में कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

में ज्यादा वस्त्रों का में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस में इसके जरिए अभी आपने सुना अरिजीत सिंह के आवाज में ये गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। श्रेया घोषाल एंड के प्रोग्राम में

06-1990-262-6611. बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए फरमाइश हुआ तमाम खबरें तमाम रिक्लामे मृत्यु समाचार के लिए 03-265-65-60 टेलीफोन नंबर है।

अरिजीत सिंह एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया है, लागी ना छूते। अ जेंटलमैन फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक बार फिर से अरिजीत सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं।

अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

अरिजीत सिंह के बाद चले प्रोग्राम पे हम आपको ले चलते हैं श्रिया जी की ओर। श्रिया जी की आवाज में अबकी बार ये सॉन्ग, ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई श्रेया जी की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए अब की बार आज के प्रोग्राम में फिल्म आजा न चले सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

एक बड़ी ही खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आप सभी सुनने वालों की सेवा में अभिजीत और खासतौर पर अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में अभी आपने सुना। एक गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति और आदित्य नारायण की आवाज में पेश किया जा रहा है।

Sinovalo Radio SBS का वेबसाइट radiosbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में तुलसी कुमार, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है सलामत

सुशील कुमार, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की आवाज़ में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में अगली बार एक और काफ़ी खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज़ में ये गाना प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में गाना जो अगली बार पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

गाना जो पेश की गए अजय और श्रेया जी की आवाज में, ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर।

USBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। बाहर से सुहाना है, अंदर से इंजन पुराना है, गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो USBS के जरिए। अभी आपने सुना सोनू निगम एंड ऋषा शर्मा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03265 65 65 60। राहत जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: इस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Is असर छोड़ जाऊंगा।
3: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
4: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
2: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
3: 6th of September, unforgettable 90s.
4: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
3: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
0: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

आवास में ये गाना पेश की गई सालीमार फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में रेडियो SBS का आज की खास प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अगली बार लता जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में अगली बार ये गाना बस सुनते ही रहना।

मंगेशकर की आवाज में एक फिल्म शर्मिले, फिल्म का नाम शर्मिले, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जाए।

गाना बज प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। आसरो में थे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए एक बार फिर से मोहम्मद रफी और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार शोला और शबनम फिल्म का नाम होगा।

uit de film Shootout Shabnam. Mohammed Rafi और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार आपको हम ले चलते हैं एक और काफी पुरानी फिल्म का गीत की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है, लेकिन अब की बार सुभाष भाटिया की आवाज में पेश किया जा रहा है जो तलत जी का गाने बड़ी ही खूब गाए हैं। आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है ये गाना बस प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप हर एक सुनने वालों को खबर किया जा रहा है, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0362656560। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं।

तलत जी का एक खास गाया हुआ गाना बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं खास तौर पर हेमंत कुमार की आवाज में एक गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म नागिन का गीत आप सुनते ही रहना।

हेमन कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा, उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये खास पुरानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है औलाद।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशली रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली रमलाल, दी यू फॉर हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्रामा गीतों के लहर। Wilt u reageren? Kan het altijd? Surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio naar 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया। इसको सुनो तो श्रेया घोषाल एंड फरहान सईद। दिल्ली चकवाम आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। खामदा फेदर में कितनी बातें याद आती है द फिल्म लक्ष्य।

ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों

इधर चला मैं उधर चला, आपने सुना फिल्म कोई मिल गया से। अब आप सुनिए फिल्म मिलन तौकी से नेहा करोरे की आवाज में शर्त।

0: मुड़ जाऊंगा।
1: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
2: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
0: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
1: 6th of September, unforgettable 90s।
2: के लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
1: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
3: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इस गजोंगे दो जगजीत सिंह एंड कुमार द फिल्म प्रेम गीत एन गजोंगे दो किशोर कुमार एंड आनंद कुमार कॉम्प्ट प्यार लो प्यार लो।

आप सुन वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। उत्तरेख ओमदीप नंबर 65 से नंबर 65 से समस्त दुखित परिवार विदेशी और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। रविवार 23 तारीख अगस्त सोंदाग 23 अगस्त 57 साल 57 साल की आयु में स्वर्गीय पिता श्री महावीर विदेशी और माता श्री सवित्री विदेशी बलदेव राय की बेटी रॉबी हेमंत कुमार विदेशी, जगदेव विदेशी, रामदेव विदेशी, सुशीला विदेशी, सीता सत्यवती विदेशी, सवित्री सुक्कू विदेशी, ईश्वर दे गणपत सिंह विदेशी और दो स्वर्गीय बहन सविता पार्वती विदेशी और कमलावती विदेशी के बहन स्वर्गीय राजेश सुक्कू के सारी, जय गणपत सिंह के बड़की लड़कन संजय बदल और रायश्री बदल, कविता गणपत सिंह, प्रियान गणपत सिंह, त्रिष्मा गणपत सिंह, अमृत रामसुदित, अर्जुन रामसुदित, अविनाश रामसुदित, नरेश सिंह और प्रभनूर सिंह के मौसी, नादिया रामसुदित के मौसिया सास, रायन विदेशी और अमृता ठाकुर विदेशी के फुआ, अजय ठाकुर के फुआ सास, निर्मल रामसुदित और अभय रामसुदित के आजी, रानी ठाकुर और रेशमी ठाकुर के नानी। उत्तरेख ओंदीप नंबर 65 की रहने वाली गायत्री विदेशी की मृत्यु हो गई है। आरती के आखिरी दर्शन करने के लिए आप हर एक को मौका दिया जा रहा है। फंडाग मूसदाग 2 सितंबर फन 7:00 तोत 8:00 उत्वाट सेंट्रम दालवैक फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उत्तरेख ओवरवेक्ट में। अर्थी शुक्रवार 4 तारीख सितंबर, फ्राइडे 4 सितंबर स्मिडक्स 2:00 क्रेमेटोरियम दालवैक फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उत्तरेख ओवरवेक्ट में दा क्रिया किया जाएगा। सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि घर पर बैठक नहीं है, एरिस खेन बैठक ऑन हाउस। जिलों की मृत्यु समाचार के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या समस्त दुखित परिवार को आप शोक सहानुभूति पेश करना चाहेंगे तो 2 तार की नंबर आपको दिया जा रहा है 06-28-21-64-82 और दूसरा तार की नंबर है 06-38-25-97-25। सुनने वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानी भूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की।

0: रण लंका फूंक दिए जाकर गढ़ लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

0: जाऊंगा। मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
1: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
2: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
0: 6th of September, अनफॉरगेटेबल 90s।
1: के लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
0: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
3: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

चढ़ाते रंग आपने सुना फिल्म यमला पगला दीवाना से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है कोई मिल गया से, ऋतिक रोशन का फिल्म है। गाने के बोल है, इट्स मैजिक आई हैव गॉट द वाइब दैट यू नीड।

बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में फिल्म कलंक से, और अब आप सुनिए फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए चांद छुपा बादल में।

कुछ तो है फिल्म का नाम, और अब आप सुनिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से, अर्जुन, सुखविंदर सिंह और पैरी की आवाज में, हाउस पार्टी सॉन्ग।